रसना शब्द सुहाए, नाम जाए सदा सुख पाए, नाम रहे लिवलाए, नामे उपजय नामे बिनसय नामे सच सुमाए।

आप वेच धर्म गवाए माया बंधन टिके नाही खिन खिन दुख संताए नानक माया का दुख तलै चुके जा गुर शब्दे च तुलाए मन मुख मुगद गवार पिरा जियो शब्द मन ना वसाए माया का परम अंध पिरा जियो हर मारे क्यों पाए क्यों मारे पाए बिन सदगुरु पाए मन मुख आप गणाए हर के चाकर सदा सुहेले हर

मोहन तेरे वचन अनूप चाल निराली, मोहन तू माने एक जी अवर सब राली, मान्यता एक वाल एक ठाकुर जिने सब काल तारिया, तुझ वचन गुर के वस किया आद।

से सबे फल पावे मल मूत मूड दे मुग्ध होते से देख दर्श सो ज्ञाना बिनवंत नानक राज नेचल पूरन पुरख भगवाना मोहन तू सफल तू सफल फलिया सन परवारे मोहन पुत्र मीत भाई कुटुंब सब।

असंख खते खिन बख संहारा नानक साहब सदा दयारा। श्लोक सत कहो सुन मन मेरे सरन परो हर राए उक्त सियानब सगल त्याग नानक लय समाए पौड़ी। ससा सियान पछाड़ एना हिकमत हुक्म न प्रब पतियाना सहस पात करे चतराई संग तुहारे एक ना जाई। सऊ सऊ जप दिन राती रे जी चलै तुहारे साथी साध सेवा लावे जह आपै नानक ताको।

जीव पिण जिन सुख दिए ताहे न जानत तत् लाहा माया कारणे दय दय ढूंढन जाए देवन हार दतार प्रभ निमख न मने बसाए लालच झूठ बिकार मोह या संपे मन माहे लांपट चोर निंदक महा तिन्हू संग बिहाए तुद भावे ता बख्स लै खोटे संग खरे नानक भावे पार ब्रह्म पाहन नीर तरे सलोक खात पीत खेलत हस्त परमे जन्म अनेक भवजल ते काडो प्रभु नानक तेरी टेक पौड़ी खेलत खेलत आयो अनक जोन दुख पाए खेद मिटे साधु मिलत सतगुर बचन समाए खिमा गही सच सांचयो खायो अमृत नाम खरी कृपा ठाकर पही अंध सुख बिसराम खेपिन बाही बहुत लाभ घर आए पतवंत खरा दिलासा गुर दिया आए मिले भगवंत आपन किया करह आप आगे पाछे आप नानक सो सराही है जे घट घट रहा ब्याप सलोक आए प्रभ शरनागति कृपा निध दयाल एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल पौड़ी अखर मैं त्रै भवन प्रभ धारे अखर कर कर बेद विचारे अखर शास्त्र सिमरत पुराना अखर नाद कथन वखियाना अखर मुगत जुगत पै भरम अखर कर्म किरत सुच धर्म दृष्ट मान अखर है जेता नानक पार ब्रह्म निरले पास लोक हथ कलम गम हथिक लिखावती उर्ज रहो सब संग अनूपर पावती उस्तद कह न जाए मुखो तहारिया मोही देख दर्श नानक बलहारिया पौड़ी हे अच्युत हे पार ब्रह्म अबनासी अगनास हे पूर्ण हे सर्वमय दुख भंजन गुणतास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोबिंद हे गुण निदान जाकै सदा बबेक हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार हे संत कै सदा संग निधारा आधार हे ठाकर हों दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए नानक दीजे नाम दान राखो हिये परोय श्लोक गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेसरा गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन गुरुदेव बंधव सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेस है गुरुदेव मंत निरोधरा गुरुदेव सांत सत बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुरज्ञान मजन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पत तपवित करा गुरुदेव आदि जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत हर जप उधरा गुरुदेव संगत प्रमेल कर कृपा हम मूड पापी जत लग तरा गुरुदेव गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेसर गुरुदेव नानक।

पराही अनक बिघन जय आए संहार हर का नाम तत्काल उधार अनक जोन जन मैं मर जाम नाम जात पावे बिसराम हो मैला मल कबू न तोवे हर का नाम कोट पाप खोवे ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाई।

अंतर मल माया शब्द नाहे कछ करे छुपाया बाहर ज्ञान ध्यान इसनान अंतर ब्यापै लोभ सवान अंतर अगन बाहर तन स्वाहा।

मिथ्या हाथ पर दर बको हिरे, मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रे रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद, मिथ्या चरण पर बकार को तहावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे, मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत बिकारा, बिन बूझे मिथ्या सब पै, सफल दे नानक हर हर नाम लै, व्यर्थी साकत की आरजा, साच बिना कह होवत सूचा,

जय प्रसाद तेरी पात रहा, गुर प्रसाद नानक जा सका है। जय प्रसाद सुने कर्ण नाद, जय प्रसाद पेखे बिस्माद। जय प्रसाद बोले अमृत रसना, जय प्रसाद सुख सहजे बसना। जय प्रसाद हस्त कर चला, जय प्रसाद संपूर्ण फल है। जय प्रसाद परम गत पाव है, जय प्रसाद सुख सहज समाव है। ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लागो, गुर प्रसाद नानक।

साध संग मल सकली खोत, साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रगटे सो ज्ञान, साध के संग बुझे प्रभ नेरा, साध संग सब होतन मेरा, साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बरने कौन परानी, नानक साध की सुबह प्रभ माहे समानी, साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा पर फुले, साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पहुंचा, साध संग होए सब की रेन, साध के संग मनोहर बैन, साध के संग न कतू तहावे, साध संग अस्तित मन पावे, साध के संग माया ते पहन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न, साध संग दुश्मन सा मीत, साधु के संग महापनीत, साध संग कैस्यो नहीं बैर, साध के संग ना बीगा पैर, साध के संग ना ही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा।

त्रिपतासै मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत जित हर रस।

देव को कहत सदाशिव निरंकार का चीनतन है पेव। आप अपनी बुदहै जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुए तेती, तुमरा लखा न जाहे पसारा केह बिद सजा प्रथम संसार। एका रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कही पुपा, अंड जेर से तजकीनी उद्भुज खान बहो रच दीनी। कहूं फूल अराजा हव बैठा कहूं सिमट पयो संक्री कैठा। सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अवरक्षा बेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता। जे अस्तुतव शरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे, पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सबटारे। जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नह है, रक्षा हुए ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मै हर हो, रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट छा शवय सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा,

थाल विष्टिन वस्तु पयो सात संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो।

इतनी सेवा प्रवान करनी जी कीर्तन कर दिया पुला दी माफी बख्शने गुरजंट सिंह जी पटियाले वाले आप जी नूं कथा राही जोड़न गए उन्होंने पास को प्यार से सरन करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

जोड़ के देखिए तां जेड़ा एक्सपीरियंस शब्द है ना ये भी साड़ी हम में ही है। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। ज्यों ज्यों बंदा बड़ा हुंदा है त्यों त्यों अनेक चीजा सीखता है। एक तो एक एक्सपीरियंस हुंदा है उन्हों त्यों पकदा जांदा है।

सिंध की लैन उल्ट आप आपे पई पलट कह को बैन कहिंदे लूण दी डली समुंदर दी था लैन गई घुल के समुंदर दा ही रूप हो गई आके उन्हां डलियां नूं की दस दी जिहड़े जिहड़े वाहिगुरु दे मार्ग ते चले वह वाहिगुरु दा ही रूप हो गए वह आके जीवां नूं की दसण के वाहिगुरु किदां दा है आखो सतनाम ताही उन्हां ने फिर इक्को ही गल कही है कहिंदे कहो कबीर गुंगा गुड़ खाया पुछे ते क्या कही है गुंगा गुड़ खा भी लवे ते कह भी दवे मिठा या फिर गुंगा ना होया कहिंदे ता गुंगे दी मठियाई है भाई ये उल्ट के परतन वाला है ही नहीं कोई जिवें कहिंदे पतंगियां दे विचों किस बैठे सी किसे पतंगे ने कहा अज किते लाट नहीं बलदी कहिंदे इक पतंगा कहिंदा मैं देख के आउणा ते ओ देखण चला गया ओ डीक दे रहे मुड़िया ही नहीं पतंगे कहिंदे लगदा धोखा कर गया वापस आके दस्या ही नहीं जिहड़ा जिहड़े दूसरे पतंगे सियाणे सी ओ कहिंदे धोखा नहीं कर गया ओ पतंगा सी जदों अग मिली ते उत्ते ओ लाट ते डिग के सड़ गया उहदा ना आउणा ही दसदा कि अगे अग बलदी है आखो सतनाम श्री वाहिगुरु कहिंदे जिहड़े मिल जांदे आ वाहिगुरु च मुड़ के परतदे नहीं जदों कबीर वाहिगुरु च मिले कबीर नहीं परते मुड़ के जदों रविदास जी मिले रविदास जी नहीं परते

ठंडा हर नाव ठंडे नाम नाल इस कलयुग तत्ते दे विच वाहिगुरु दे शीतल नाम नाल जुड़ जांदे है, उन्हां दा अंदरला ठंडा हो जांदा है, शांति वरत जांदी है। कदे साध संगत जी सिर ते भार चुक के देखियो, कोई 25-30 किलो भार चुको, भार चुक के उन्हों अद्धा पौना किलोमीटर लैके जाओ, बाद चुनू उतार दो सिर तो, जदों पंड जी डेगोंगे ना थले सिर तो, उस तो बाद सारा शरीर दिल दिमाग ऐ रिलैक्स फील करूगा अपने आप नू। भी बंदा सोचो पता नहीं किड्डा भार लै गया,

भगत पीर साहब का शब्द है, कल भी आप पढ़िया सी, तो संगत वालों फिर हुक्म है कि वह शब्द दोबारा फिर एक बार सुनाया जाए। आओ बड़े प्यार दे नाल

भक्त कबीर साहब बहुत ही गहरा सोचने वाले संत, जिन्हां दी बाणी मैं कल भी बेनती की सी, जिंदगी दी बहु पक्षी बाणी है। हर ढंग दे नाल उन्होंने जीव नूं समझाया है। हुण इह साडे ते डिपेंड करदा कि असी किन्ना क समझदे हां, साडा पात्र किन्ना है, साडा भांडा किन्ना है। उन्हां वल्लों दस दिता गया है कि संसार जिहड़ा इह भय विच डर विच है, सहम दे विच है, तो बाहरों जिन्हें भी साधन बनाए गए हैं ये डर तो भय तो बचन वास्ते। सब तो वड्डा जो सहम है आदमी दे मन दे विच, सब तो वड्डा सहम वो मरन दा है। कबीर साहब कहिंदे ने मरत ना सोग बेयोगी, रहाओ दी पंक्ति है। इस डर तो बचन वास्ते आदमी ने धर्म का भी सहारा लिया, धर्म की भी आड़ दे विच के मौत ना आवे, मैं मरा ना, जे मरा तो अगले जन्म के फिर मैं कुछ मिले तो अगले जन्म की भी लालसा नाल जुड़ी है। कई बार आदमी कहता मैं इस जन्म से चलो सुख नहीं मिले, तो कोई गल नहीं, अगले जानते तो मिल जाए, तो अगली आस भी आदमी ला के कई बार धर्म अपना है। पर कबीर साहब कहते ने तन दे लैवल दे उत्ते, शरीर दे लैवल दे उत्ते जिन्ने भी आवरण किए जान, जिन्ने भी कर्म किए जान, उसनू कर्म कांड ही कहा जाता है। वो कर्म कांड शरीर दे नाल संबंधित हैं, शरीर दे खत्म हुंदिया वो कर्म कांड भी खत्म हो जाते हैं। भावें वह सिवरन कर रहा है, भावें वह पूजा कर रहा है, भावें वह दान कर रहा है, भावें पुन कर रहा है, अगर उहदे विच मन उहदी आत्मा पूरे तौर पर शामिल नहीं होंदी, क्योंकि साधना मन की है, शरीर की साधना नहीं। इस करके आदमी ने मन की मैल नूं धोण वास्ते बाहर शरीर नूं धोना शुरू किया। यह जिन्हें भी संसार तीर्थ बने ने, तीर्थ अस्थान बने ने, इस करके बने ने कि मेरा मन जिहड़ा है निर्मल हो जाए, मैं पापी ना रहा। पर गुरु कहिंदे ने नहावन चले तीर्थी, मन खोटे तन चोर, जिहड़ी तन की मैल ना मनते जात। शरीर नूं धोण दे नाल मन निर्मल नहीं हुंदा, शरीर नूं मुंदरां पा लैण दे नाल, शरीर नूं खिंथा पवा देण दे नाल, शरीर दे उत्ते भस्म मल लैण दे नाल मन की मुक्ति नहीं जे होंगी, मन मौत को नहीं जे डरनों हटता। ये कबीर साहब कहते जो हम गुरु ने मैं समझाया है ना कि मुंदा केड़िया पानिया, इस माया तो बचना कितना, पंक्तियां सारिया आदियां ने, ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है। त्रिपल कहते ने तीन गुणा, रजो गुण, तमो गुण, सतो गुण। इस दे विच जिहड़ी माया मन नूं प्रभावित करती है, कबीर कहिंदे ने मैं उस माया का असर खत्म किया है। मन कर ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है, मैं इहदा असर जिहड़ा रजो गुण तमो गुण रज गुण तम गुण सतगुण, ये तेरी है माया, बाणी की पंक्ति है। इह तों मैं हुण निर्लेप हो गया, ते कल्प विवर्जित पंथा कर दिता है। जड़ियां कल्पनावां दी जीवन च मैं जिउंदा सां, वो कल्पना नूं मैं विवर्जित, मैंने वर्जित, मैंने रोक दिता है। वर्जित मैंने रोक, जिहड़ी चीज़ मनाई, जिस चीज़ की मनाई हो गई उसनों विवर्जित कहते हैं। तो मेरा हुण ये पंथ बन गया है गुरु दे उत्ते दर दे उत्ते चलना, ते मैनूं मौत दा कोई भय नहीं रह गया। मरत ना सोग बेयोगी, क्योंकि संसार जिहड़ा डरदा पिया। कबीर कहिंदे ने अपनी बाणी च

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

उन संग मोहे उदारो सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम रहाओ।

प्रभु का सिमरन तीर्थ शनानी, प्रभु का सिमरन दरगाह मानी, प्रभु का सिमरन हुए सो भला, प्रभु का सिमरन सफल फला। से सिमर है जन आप सिमराए, नानक ताके लागो पाए। प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभु का सिमरन उदरै मूछा। प्रभु का सिमरन तृष्णा बुझाए, प्रभु का सिमरन सबके सुझाए। प्रभु का सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु का सिमरन पूर्ण आसा। प्रभु का सिमरन मन की मल जाए, अमृत नामृत माहे समाए। प्रभु जी बस है साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभु गो सिमरे से तनवंते, प्रभु गो सिमरे से पतवंते। प्रभु गो सिमरे से जन प्रवान, प्रभु गो सिमरे से पुरख प्रधान। प्रभु गो सिमरे से बेमहताजे, प्रभु गो सिमरे से सर्व के राजे। प्रभु गो सिमरे से सुखवासी, प्रभु गो सिमरे सदा विनाशी। सिमरंते लागे जन आप दयाला, नानक जन की मंगेर वाला। प्रभु गो सिमरे से पर उपकारी, प्रभु गो सिमरे तन सद बलिहारी। प्रभु गो सिमरे से मुख सुहावे, प्रभु गो सिमरे तन सुख बेहावे। प्रभु गो सिमरे तन आत्म जीता, प्रभु गो सिमर है तन निर्मल रीता। प्रभु गो सिमर है तन आनंद कनेरे, प्रभु गो सिमर है बसे हर नेरे। संत कृपा ते अंदिन जाग, नानक सिमरन पूरा भाग। प्रभु गै सिमरन कार्ज पूरे, प्रभु गै सिमरन कबूना चूरे। प्रभु गै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु गै सिमरन सहज समानी। प्रभु गै सिमरन नेचल आसन, प्रभु गै सिमरन कमल बेग आसन। प्रभु गै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार। सिमरह से जान जिन कौ प्रभ मया, नानक तिन जन सरणी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग भेद उपाय। हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन चौकुंट जाते। हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर

नाम की महिमा संत रसाय संत प्रताप दुर्त सब नसाय संत का संग बट भागी पाई है संत की सेवा नाम ते आई है नाम तुल कश अबर न हुए।

माया शब सनाहे कश करे शपाया बाहर ज्ञान ध्यान इसनान अंतर व्यापे रोब समान अंतर अगन बार तन स्वाह गल पाथर कैसे तरे अथाह जाके अंतर बसे प्रभ आप नानक तेजन सहज समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावे करगे लिहो ओड़ निभावे कहाँ बुझारत बुझे डूरा निष्कैया तो समझे पूरा कहाँ बिसन बद गाव गुंग जतन करे तो पी सुर भंग कै पिंगुल पर्वत पर पवन नहीं होत ऊहा उस गवन करतार करुणा में दीन बेनती कराय नानक तुमरी कृपा तराय संग सहाई सो आवे न चीत जो बैराई ता स्यों प्रीत बलवा के ग्रह पीतर बसाए

सात जाए अष्टपदी दस वसूले पाछे पावे एक बस्त कान मिखोट गबावे एक भीना दे दस भी हिरले तो मुड़ा कहो कहा करे जिस ठाकुर स्यों ना ही चारा ताको की जय साधन पसकारा जाके मन लागा ब्रह्म मीठा सर्व सुखता हूँ मन उठा जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगंत सापनी दे रास खात पीत भरते अर्ध उलास अपनी अमान कश बहर साले अज्ञानी मन रोष करे अपनी प्रतीता भी खोवै और उसका विश्वास न होवै जिसकी वास्तव से आज्ञा राखे प्रभु की आज्ञा वन मत है उसते चौगुन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक भांत माया के हेत सर्व होवत जान अनेत बिरकी छाया सो रंग लाभ अबन से अमन पछतावै जो दिसै सो चालन हाल लपट रहो ते अंध अंधार

ष्टपदे जय प्रसाद शक्ति अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे जय प्रसाद सुगंधत लावे तिसको सिमरत परम गद पावे जय प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याहे सदा मनंदर जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याहि त्यावन जोग जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसे त्याकत लुभावे जय प्रसाद सुख से जय सो वीजय मनाठ पहर ताका जस गा बीजय जय प्रसाद तुझ सब कऊ मान मुख ताको जस रसन बखान जय प्रसाद तेरु रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जब दरगे मान पावे नानक पात से ती कर जावे जय प्रसाद आरोग कंचन देही लिव लाभ हो तिस राम सनेही जय प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताकै जय प्रसाद तुझको ना बहुचै बल साहसा सिमरो प्रभ ऊचे जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे हे जय प्रसाद आ भुखन पहरिजा मन ते सिमरत क्यों आलस कीजा जय प्रसाद असवहास असवारी मन तिस प्रभ को कबहू ना बेसारी जय प्रसाद बाग मिलख तना राख प्रोहे प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई ऊठत बैठ सा तिसे त्याई तिसे त्याय जो एक अलख है इहां उहां नानक तेरी रखै जय प्रसाद करे पुन बहुदान मनाट पहर कर तिसका ध्यान जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को सा सा चितारी जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप।

जय प्रसाद सुख सह जय बसना, जय प्रसाद हस्त कर चलै, जय प्रसाद संपूर्ण फलै, जय प्रसाद परम गत पावै, जय प्रसाद सुख सह समावै। ऐसा प्रभु त्याग अवरक्त लग हो, गुर प्रसाद नानक मन जाग हो। जय प्रसाद

मानव जो पाप का सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल ना लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी के मानो प्रगा जैसे धर भरे आकाश। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतर समान। ब्रह्म

सबूपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कशबुराना पाया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की नरमल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।

ब्रह्मज्ञानी कह हुए स्वफला, ब्रह्मज्ञानी सुफल फला, ब्रह्मज्ञानी संग सगल उदाहर, नानक ब्रह्मज्ञानी जपाय सगल संसार।

राष्ट्रपति, कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट भये तीर्थवासी, कई कोट बन भ्रमे उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीश्वर होते, कई कोट आत्म ध्यान धारे, कई कोट कब का विचारे, कई कोट नवत नाम ध्यावे, नानक करते का अंत न पावे, कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अभिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्भ को हिरे, कई कोट पर दुख न करहे, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति योगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प पाए, कई कोट पाथर बिरख न बजाए, कई कोट पवन पानी बसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नखेतर, कई कोट देव दानव इंद्र शेर शत्र, सगल समग्री अपने सूतार है, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है, कई कोट राजस्थान सातक, कई कोट वेद प्राण सिमृत अर शास्त्र, कई कोट किए रतन संबंध, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर सुवर्ण थीवे, कई कोट जख किन्नर पिशाच, कई कोट भूत प्रे सूकर मृगाच, सबते नेरा सब होते दूर, नानका परप त्रया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी, कई कोट जन्मे जीवे मरहे, कई कोट बहु जुन्नी फिरे, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काले थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मैं चिंत, कई कोट मा जय जय भाणा तैत राखे।

भीचार जैसे ही दृष्ट करे तैसा होए आपे आप आप रिपसोए जो किस गिनो स्वपन रंग सबते दूर सब हुंके संग पुजा देख करे विवेक आपे एक आपे अनेक मरे न बिनसे आवे न जाए नानक सदी रहया समाए आप उपदेश समझे आप आपे रचया सब के साथ आप किनु आपन विस्तार सब काश उस गाव करने हार उसते पहन कहो किश होए थान थनंतर एक सोए अपने चलताव करने हार

सब जाए, संत के दुख नीच नीच आए, संत दुखी का थाऊ को नाहे, नानक संत भावे ता ओए बिगत पाहे, संत का निंदक महत ताई, संत का निंदक खिन टिकन ना पाई, संत का निंदक महा त्यारा, संत का

अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल सर्वजिया पे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तसे बिरथा गोई नाहे। रे मन मेरे सदा हर जाप बिनासी पर भी आपे आप अपन किया कशु ना होए जैसो प्राणी लोचा कोए तिसमें ना ही तेरा किश काम गत नानक जब एक हर नाम रूबंतो ना ही मोह प्रभु की जोत सगल घट सो है तरमंता क्या को गरबाए जहाँ सब कुछ तिसका दिया।

सोजन सदा अरोग जो मंत्र को थामे थमन थे गुर का शब्द बनया समन ज्योपा खाण नाव चढ़ तरह प्राणी गुरु चरण लागत न स्तराय जो अंधकार दीपक प्रकाश गुरु दर्शन देख मन हुए विकास जो महाउद्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे तिन संतन की बांचो तुहूर दार की हर लोचा पूर मन मूर्ख का ये बिरलाइये पूर्व लिखे का लिखिया पाइये दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग तू तसे चितार जो कश करे सोई सुख मान भुला कहे फिरे अजान

चाहे प्रभ ने स्यो रहे समाय, जो होवा होवा सो जाने, प्रभ ने का हुक्म शान है, तिसकी महिमा कौन बखाना हो, तुसका गुण के एक ना जाना हो, आठ पैर प्रभ से हजूरे, कौ नानक से जन पूरे, मन मेरे तिनकी ओट ले, मन तन अपना तेन जन देहे, जिनजन अपना प्रभु बिछाता, सोजन सर्व थोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर्श पाप मिटावे, अवर सियाल में सगली शाड, तिजन की तू सेवा लाग, आमन जानो भी तेरा, नानक तिजन के पूजो सद पैरा सरो, सत पुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नामो, तिसके संग सिख उतरै, नानक हर गुण गाओ अष्टपति। सतगुर सिक्की करै प्रतपाल, सेवको गुर सदा दयाल, सिक्की गुर दुरमत मल हराय, गुर बचनी हर नाम छरै, सतगुर सिक्के बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै, सतगुर सिक्को नाम धंदे, गुर का सिख विभागी हे, सतगुर सिक्का हलत पल सवारे, नानक सतगुर सिक्को जी नाल संवारे।

मूर्खमना सुदमीदुटम अरबनता अंते कहौ तम कमन सनाथा राजरंग माया विस्तार अंते कहौ कमन छुटकार असस्ती रथ सवारी झूठा डम झूठ पासारी जिन दिए तुस बुझे ना बेगाना नाम विसार नानक मस्ताना नाम विसार नानक पशुताना गुर की मत तू ले याने भगत बिना बो डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किर बिख जाहे आप जपो अबरा नाम जपावो सुंद कहत रह तगत पावो सार पुत्र सत हर को नाओ सह सुभाए नान गुन गाओ गुन गाव त्रिवतर समैल बिन सजाए होमे बिख फैल होए अचंद बसै सुख नाल सास ग्रासर नाम संभाल शाड सियान में सगली मना सासंग पावे साच धना हर पुंजी संज करो बेवहार इहां सुख दर गै जयकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जब एको सा राहे एक सिमर एको मन आहे एकस के गुण गाव अनंत मंत्र जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूर्ण पूर्ण रहो प्रभ्याप अनक विसार एक दे भय एक रात पराशत गए मंत्र अंतर एक पर एक प्रभ राता गुर प्रसाद नानक एक जाता सलोक फेरत फेरत प्रभ आया परया तव शरणाए नानक की प्रभ बेंती अपनी भगती लाए अष्टपदी जाचक जन जाचै प्रभदान कर कृपा देवो हर नाम सा जना की मांगो धूर पारबन मेरे पर सरदा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास प्रभ तुमे ते आवो चरण कमल सिंह लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नेत नीत एकूट एकुआ आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दुष्ट मां सुख होए

फिर जाप अष्टपदी। जब अकारे काशना दृष्टेता पापन तब कहते होता, जब तारी अपन सुन्न समात बैर विरोध के संकमात, जब इसका वर्ण चिहन जापत भर्सो कव किसे व्यापत, जब अपने आप आपार ब्रह्मता मोह कहाँ किसोवत ब्रह्म, अपन खेला भ्रतीजा नान करने हार न दूजा, जब होवत प्रभ केवल तनिता बंद मुगत कहो किसको घनी, जब एक हर अगम अपार तब नर्ग सुर कहो कौन अवतार, जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव शगत कहो गत ठाए, जब आपे आप अपनी जो तर तब कमन ने डर कमन कत डर, अपन चलताप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार, अविनाशी सुख आपन आसन त जन्म मरण कहो कहा विनाशन, जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए, जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस पूछत।

सेवक हो सेवा बने आए हुक्म बूझ है परम पद पाई इससे ऊपर नहीं बिचार जाके मन बसे आदरंगा बंधन दूर भयंद्र भय रंदन पूजे गुर के पैर ए लोग सुखी है पर लोग सुहे ले नान घर पर व्यापे मेले सा संग मिल करो आनंद गुण गाओ पर परमानंद राम नाम दत करो विचार दुर्लभ देखा करो उदार अमृत वचन हर के गुण गाओ प्राण तरण का यह स्वभाव आठ पैर पर पेखो नेरा मिटे अज्ञान मन से अंधेरा सुर उपदेश हृदय बसावो मन चेन मन छे नानक बल पावो हालत पल दो लेहो सुवार राम नाम अंतर उतार

मत पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन पेख उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामे पुरख प्रदान जिस मन बसे सोत निहार

जन सोजी पाए स्वंतर सो बाहर अनंत घट घट बया ब्रहया भगवंत तरनमाय आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बंदन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आ गया तैसा कर्म पौन बाणी बै संतर माहे चार गुण दसे समाहे।

पूर्ण ही सेव की सेव, आल जंजाल बिगाड़ते रहते, राम नाम संरसना कहते, कर प्रसाद दया प्रभतारी, नानक नबी खेप हमारी। प्रभु की उस्त करो संत मीत, सावधान एकागर चीत, सुखमनि सहज गोविंद गुरु नाम, जिस मन बसे सोत निधान, सर्विच्छा ताकि पूर्ण होए, प्रधान प्रकट सब लोए,

गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोय न सुजई जे तिस गुण कोय करे। सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनया धरत धवले आकाश सुनया दीप लो पाताल सुनया पोहे न सके काल नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास।

जन होए जे को मन जाने मन कोए मन सुरत होवे मन बुद्ध मन सगल पवन की शुद्ध।

असंख जाप असंख पाव असंख पूजा असंख तप ताव असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर

लिखी है। फिर गावार सो दर के हा सो कर के हा जित बह सर्व संभाले वाजे नाद अनेक असंखा केते वामन हार केते राग परि स्यों कहियन केते गावन हार गावे तुह नो पौन पानी बै संतर गावे राजा धर्म दुआरे गावे चित गुप्त लिख जान लिख लिख धर्म विचारे गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुहारे गावे इंद इदासन बैठे देवत्यां दर नाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे।

काम है, अतिहे है, अपिहे है, अजीत है, अपिहित है, त्रिमान है, निदान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपांज है, अचूज है, अचांज है, अमीक है, रफीक है, अतंद है, अबंध है, निर्बूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अलाह है, अजाह है, अनंत

सुहादेव अनंगी नामे स्वभाव तीसरे अनंगी नामे स्वभाव तीसरूपे प्रपंगी प्रमाथे स्वभाति विभुक्ते कलंकं बिना नेक लंकी स्वरूपे नमो राज हृदय स्वरंग परम रूपे नमो जोग जोगे स्वरंग परम सिद्धे

योगेश्वरं परम युक्ते नमो नित्य नारायण क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सोतर में नमो रोग हरता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो पूप पूपे पुप

ही बहुचित माधु पार शांत व प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसने अपांग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निहदिन अनास आजान बाहो साहान साहो राजान राजपान आन

विश्वम पर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंड से है, खाल खंड से है, परते पर है, करुणा कर है, अजप अजप है, अथप अथप है,

हैं, परमेश्वर हैं, अकृताकृत हैं, अमृतामृत हैं, अजबाकृत हैं, अमृतामृत हैं, नरनायक हैं, खालकायक हैं, विश्वम्पर हैं, करुणालय हैं, निरपनायक हैं, सर्वपायक हैं, पवभंजन हैं, अरगंजन हैं, जपतापन हैं, जप जापन हैं, अकलंकृत हैं, सर्वाकृत हैं, कर्ता कर हैं, हरता हर हैं,

चेतकी इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपार हमरे दुष्ट सब तुम काब हुआ पुहाथ दे मोहे बचाव।

हर माया मायागण सभी को जेही करते खेल रचाया जात पहाणा ता जमया परिवार भला पाया लिब छुड़की

पावड़ी आपे ने आप साजे आप इन्हें रचियो नाओ तो ही कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ दाता करता है आप तू तुस देव है करे पसाओ तू जारो ही सब सह दिल ऐसे जिन कवाओ कर आसन डिठो चाओ कर आसन डिठो

ओडुरावा चाटे पाए वेखे लोखा से घर जाए रोटिया कान पूरे ताल आप सारे धरती ना गावन गोपिय गावन कान गावन सीता राजे राम निरपाव निरंकार सच नाम जाका किया सकल जहान सेवक सेवक करम चढ़ाओ भिन्नी रहे जिन्ना मन चाओ।

दुख दारू सुख रूप भया जा सुकाम न होई, तू करता करना मैं ना ही जाहो करी न होई, बलिहारी कुदर तपस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहा। जात में जो जोत में जाता कलकला भरपूर रहा, तू सच्चा साहिब शिव सवालियो जिनकी।

कि भाई आ पृथ्वी जिन्नी भी टप रही है ये माया दे बल करके टप रही है। टपण दा नचण दा शब्द गया ना कृष्णा ते जानू हर हर नचंती नाचना, नचना और टपना एक ही गल होंदी है। वास्तव च छंदाबंदी दा जेड़ा नियम है वह पूरा करन लई नचना शब्द किया होया, नहीं आरती का टपना ही बनता। आखो सतनाम श्री वाहे। कहिंदे लोग माया करके टपदे फिरदे आ, किसी को माया बहुत है पैसा बहुत है उहदे करके टपदा फिरदा, किसी को तंदुरुस्ती बहुत है किसी को जमीन जायदाद बहुत है, सब को बहुत बहुत है तो फिर एक दूजे च वजदे फिरदे आ टपदे फिरदे आ महाराज जी कहिंदे माया करके माया दे टपाए हुए टपदे फिरदे आ। महाराज फिर ये माया दे प्रभाव तो ये टप्पण तो किवें बचिया जाए आप जी भी कृपा करके दस दो। फिर महाराज जी उत्थे बचन करदे आ कि भाई

मन दह दिसतायो माया मगन स्वाद लोभ मोहयो तिन प्रभ आप भलायो रहाओ हर कथा हर जस साध संगत स्यो एक मोहत ना ए मन लायो बिगस्यो पीख रंग कसुंभ को पर ग्रह जो हन जायो चरण कमल स्यो पाओ ना कीनो नै सत पुरख मनायो तावत को तावे बो पहती जो तेली बल्द भरमायो नाम दान इसनान ना कियो एक निमख ना कीरत गायो नाना झूठ लाए मन तोखियो नै बूझियो अपनायो पर उपकार न कबहू किए नि सतगुर सेव त्यायो पंच दूत रच संगत गोहट मतवारो मद मायो करो बेनती साध संगत हर भगत वचल सुन आयो नानक पाग भरियो हर पाछ राख लाज अपनायो टोडी महला पांजवा मानख बिन बूझे बिरथा आया अनक साज सिंगार बो करता जो मृतक ओढ़ाया रहाओ ताए ताए कृपन शर्म कीनो एकत्र करी है माया दान पुन नहीं संतन सेवा कित ही काज न आया कर अभरण सवारी सेजा कामन थाट बनाया संग न पायो अपने भरते पीख पीख दुख पाया सारो दिन समजूरी करता तो मूसले छराया खेद पियो बेगारी न्याई घर कै काम न आया पयो अनगरो जाको प्रभ को तिस हिरदे नाम वसाया साध संगत कै पाछे परियो जन नानक हर रस पाया।

अवर कछु मेरे संग ना चल, मिले कृपा गुण गाम रहाओ, राजमाल अनेक भोग रस, सगल तरवर की शाम, ताए ताए बो बेद को थावे, सगल निरार्थ काम, बिन गोविंद अवर जे चाहो, दिसे सगल

अलेखै छूटै, हम निर्गुण लेहो अबहारी। सदबक सहंद सदा मेहरबान, सबना दे आधारी। नानक दास संत पाछै पर्यो, राख लेहो एह बारी। टोडी

മഞ്ചയാണിയ സിമ്രത് വേദ പുരാണ പുകാരണ പോത്തിയാ നാ ബിനാ സബ് കൂട ഗാലി ഹോത്തിയാ നാ നിധാന പാര ഭക്ത മനു സജന മണ ദുഃഖ സാധു സംഗന സ്വയ രഹോ മോ ബാധകാര സർപ രുണ്യാ സുഖന പായന മൂല നാവ ചുണ്യാ മേരി മേരി താര ബന്ധന ബന്ധ്യാ നർക സ്വർഗ അവതാര മായാ തന്ധ്യാ സോദത്ത സോദത്ത സോതത് വിചാര്യാ നാ ബിനാ സുഖ നാ ഹേ സർപ ഹരയാ ആവേ ജായ അനേക മരമ ജനമത്തെ ബ്രഹ്മ ജസവാജുനി പരമത ജനകോ ഭയ ദയാൽ തന സാധു സംഗ പയായ അമൃത ഹർക നാമോ തിന്നി ജനി ജപലയ ഖോജ കോട്ടയ ശംഖ ഭൗത അനന്ത കേ ജസ്വദായ ആപ നിടത്തെ സ്വയ വിസരണായ ദത്താരെ അപ്പണ നാം ദേഹോ ഗുണഗാമ ദിന രാത് നാനക ചാവ ഏഹോ राग सुई महला पहला कुछ जियक अंकार सदगुरु प्रसाद मांज कुछ जिया मामन डोसड़े हो क्यों सौ रावण जाओ जियो एक दो एक चरण दिया कौन जाने मेरा नाव जियो जिन्ने सखी सौ राव्या से अम्बे छावड़िए जियो से गुण मांजना आवने हो क्या जी दोस तारे हो जियो क्या गुण तेरे बिथरा हो क्या क्या कहने तेरा नाम जियो एक तोल ना अम्बड़ा हो साध करो बाणे तेरे चाओ जाओ जियो सोना रूपा रंगला मोती तैमान का जियो से वस्तु से दितिया मैं तीन सो लाया चित जियो मंदर मिट्टी संदड पत्थर गिते राजियो हो एने टोली पुली असत कंतना बैठी पा दियो अंबर कुंजा कुलिया बग बैठे आई दियो स्वातन चली सौरे क्या मैं दसी अगे जाए दियो सुती सुती चालतिया पुली वाटड़िया जियो तैस नालो मुद्दिया स दुखा कुतरिया जियो तो दुगुण मैं सब अब गुणायक नानक अरदास जियो सब राती सुहागण ही मैं दुहागण काई रात दियो सोई महला पहला सुचजी जा तू ता मैं सब को तू साए मेरी रात जियो तुझे अंतर हो सुख वसा तू अंतर साबा जियो पाने तख्त वडाईया पाने पीख दा दियो पाने थल सिर सर वह कमल फुलिया खा दियो पाने पवजल लंगे मां पाने मंज परिया जियो पाने सो सो रंग ला सुत्रता गुण था जियो पाने सो पिया बला हो आमण जानविया जियो तू सो अगवा तोलवा हो क्या क्या टह पैया जियो क्या मांगो क्या क्या सुनी मैं दर्शन भोग पिया दियो गुरु सब दिसो पाया सज नानकी अरदास दियो सोई महला पंजवा गुणवंती जो दिसे गुरु सिखड़ा तस नव नव लागो पाए दियो आखा बिरचा जी के गुरु सज्जन दे मिलाए दियो सोई दासो बदेसड़ा मेरा मन अंत न काहू जाए दियो ए मन तैकू देव सामे मार्ग दे बताए दियो आया दूरो चल के मैं तके तो शरण आए दियो मैं आशा रखे चित में मेरा सब दुख गवाए दियो तुम्हारी चले पाड़े गुरु कह सो कर कमाए दियो त्याग्ञा मन की मचड़ी विचार है दूजा पाओ दियो यो पावे हर दर साबड़ा न लगे तीवा जियो आप बोलना जानता मैं क्या सब कुमाओ जियो आ हर भगत खजाना बख्शिया गुरु नानक किया बसाओ जियो मैं बहुड़ ना तृष्णा भुखड़ी हों रजा तृप्ता गाय जियो जो गुरु दिस सिखड़ा ते निव निव लागो पाए जियो राग सूही छंद महला पहला कर पहला एक अंकार सतगुरु प्रसाद पर जो बन मैं मत पेड़े घर पाहुणी बलराम जियो मैले अवगुण चेत बिन गुण गुण ना समानी बलराम जियो गुण सार ना जाने परम पुलाणी जो बन बाद गवाया वार कर दर दर्शन नहीं जाता फिर कैसा न पाया सतगुरु पूछना मार्ग चाली सुती रैन बिहानी नानक बाल तन रंडे पा बिन फिर तन को मलाणी बाबा मैं वर दे मैं हर पर पावे तिसकी बलराम जियो राब रिया जो चार त्रिपुण बाणी जस की बलराम जियो त्रिपुण कंतर वसुआगण अवगण वंती दूरे जैसिया सत्य सी मन सा पुर रिया पर पूरे

भले हरि साधना मिता वृता गुण कह वासल करवासल जय जय गुणवन साधना मेरे सांझ करी जय सांझ करी जय गुण करी छोड़े अवगुण चलिए पैरे पिडम्बर कर अडम्बर अपना पेड़ मलिए जय ते जाए भैया पलक ये झोले मृत भी जय गुण कहो वासला कड़ वास लई जय

ना आवै तिस तत्काल दै दिस प्रगटावै जाको अपनी करे बकसीस ताका लेखा न गने जगदीश जियो पिण सब तिसकी रास खट खट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बणत आप बनाई नानक जीवै देख बढ़ाई इसका बल नाही सहात करन करावन सर्ब को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तस भावे सोई पुन थियो कबू ऊच नीच मैं बसे कबू सोग हर खरंग हसै कबू नंद चंद व्यवहार कबू उब आकाश पयाल कबू बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिलावन हार कबू नृत करे बो पात कबू सोए रहे दिन रात कबू महाक्रोध बिकराल कबू सर्ब की हो तरवाल कबू होए बहे बड़ राजा कबू पिखारी नीच का साजा कबू आप कीर्त मह आवे कबू भला भला कहावे जो प्रव राखे ते विहीर है गुर प्रसाद नानक सच कह कबू होए पंडित करे बख्यान कबू मोहन तहरी लावे ध्यान कबू तट तीर्थ स्नान कबू सद साधक मुख ज्ञान कबू कीट हस्त पतंग होए जिया अनक जोन भरमे भरमिया नाना रूप जो स्वांगी दिखावे जो प्रभ पावे तिवे नचावे जो तिस पावे सोई होए नानक दूजा अवर न कोय कबू साध संग तिहो पावे उस स्थान ते बोहर न आवे अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं बिनास मंत्र नाम रते एक रंग सदा बसे पार ब्रह्म कह संग जो जल में जल आए खटाना त्यो ज्योति संग ज्योत समाना

नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत सवान जो जन मैं जोबनवंत सो होवत बेष्टा का जंत आपस को कर्मवंत कहावे जन मरे बोजोन परमावे तन भूमिका जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानकी हा मुकत आगे सुख पावे तनवंता हुए कर गर्भावे तृण समान कछ संग न जावे बोलस कर मन खूपर करे आस पल पीतरता का हुए विनाश सब ते आप जाने बलवंत खिन में हुए जाए पसमंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान सोजन नानक दर गए परवान कोड कर्म करे हो थारे शर्म पावे सगले बिर थारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फेर फेरे अवतार अनक जतन कर आत्म नहीं दरवे हर दरगे को कैसे गवे आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे सर्ब की रेन जा का मन होए कोह नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझ ते कछ होए तब इसको सुख नाही कोए जाबे जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारी को बेरी मीत तब लग नेचर नाही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देस जाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हो छूटे सहस खटे लख कोठ तावे तृपत न आवे माया पाछे पावे अनक भोग बिख्या के करे।

साधु राखै, हर गुण गाए अमृत रस चाखै, ओट गही संते दर आया, सर्व सुख नानक ते पाया। मृत को जीवा लनहार, भूखे को देवत आधार, सर्वन दान जाकी दृष्टि माहे, पुरब लिखे का लहना पाहे, सब के तिसका ओ करने जोग, तिस बिन दूसर होआ न होग, जप जन सदा सदा दैन रैणी, सब ति उच निर्मलिह करनी, कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सो जन निर्मल थिया, जाके मन गुर की प्रतीत, तेह जन आवे हार प्रभ चीत, भगत भगत सुनिए तैलोए, जाके हिरदे एको होए, सच करनी सचता की रहत, सच हिरदे सत मुख कहत, साची दृढ़ साचा आकार, सच वरते साचा पासार, पार ब्रह्म जन सच कर जाता, नानक सो जन सच।

जस होवे सो परसान अष्टपदी। अविनाशी ब्रह्मन मैं राख मन की तू प्रीत त्याग तेहते पर नाही किश कोए सर्ब निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निधान दयाल बकसंद सा तेरे की चरणे पाओ नानक है मन एहो अनराओ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन पन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर अनद्रु मंगल सद जाक सर्ब थोक सुनिए घर ताक राज मैं राज जोग मैं जोगी तप मैं तपीसर ग्रहत मैं भोगी त्याय तय भगत सुख पाया नानक तिस पुरख कहा किने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाहे सगल देव हारी अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत समात ज्ञान ध्यान जन दे जन दास नाम त्या वैसे तह गुण में जाको परमाए जन मरे फिर आवे जाए ऊंच नीत के स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान

बोलो जस जेहबा दिन रात प्रभ अपने जन की निदात करे भगत आत्म कह चाए प्रभ अपने सो रह समाए जो हो वाह होवत सो जन प्रभ अपने का हुक्म पछाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह एक न जानो आठ प्रभ पर बसे हजूरे आठ पहर प्रभ बसे हजूरे कहो नानक से ही जन पूरे मन मेरे तिन की ओटले मन तन अपना तिन जन दे जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्ब थोक का दाता तिसकी शरण सर्ब सुख पावे तिसके दर सब पाप मिटावे अवर सयान बसगली छाड़।

तिसके संग सिख उदर नानक हर गुण गाओ अष्टपदी। सतगुर सिख की करे प्रतपाल शिव को गुर सदा दयाल। सिख की गुर दुरमत मल हिर गुर बचनी हर नाम उचर। सतगुर सिख के बंधन काट गुर का सिख विकार ते हट। सतगुर सिख को नाम तन दे गुर का सिख वड भागी है। सतगुर सिख का हालत पालत सवार नानक सतगुर सिख को जी नाल समार। गुर के ग्रह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सह। आपस को कर कछ ना जनावे हर हर नाम।

अंधकार दीपक परगासे, नानक परम मोह दुख तै ते नासे, तवत माहे ठाड वरताई, अनंद पिया दुख नाठे पहाई, जन्म मरण के मिटिया देसे, साधु के पूर्ण उपदेसे, पौ चूका निरपौ होए बसे, सगल ब्याद मन ते खै नसे, जिसका साधन कृपा धारी, साध संग जप नाम मुरारी, थित पाई चूके भरम गवन, सुन नानक हर हर जस सरवन, निर्गुण आव सरगुण पी ओही, कला तार जन सगली मोही, अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए, हर बिन दूजा नाही कोए, सर्ब निरंतर एको सोए, ओत पोत लव्या रूप रंग, पै प्रगास साध कै संग, रच रचना अपनी कल तारी, अनक बार नानक बलहारी। श्लोका

राष्ट्रपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम अधार अवर अपाव समीत बसारो चरण कमल रिद्ध मय और तहारो करण कान सो प्रभ समराथ दृढ़ कर गहो नाम हरवाथ एह तन संचो हुवो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आसरा को मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन तन को चार कौन ठुठतावे सो तन हर सेवा ते पावे जैसो को नित बाछे मीत सो सुख साधु संग प्रीत जैसो बा को करे भली करनी सासो बा पज हर की सरनी अनक पावी रोग न जाए रोग मिटे हर आप खदलाए सर्व निधान में हर नाम निधान जप नानक दर गए परवान मन पर बोधो हर कह नाए दह दस धावते आवैठाए ताको बिघन लागे कोए जाके हृदय बसे हर सोए कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पौ बिन से पूर्ण होए आस भगत भय आत्म परगास तित कर जाए बसे अबनासी को नाने काटी जम फासी तत बजार कहे जन साचा जन मरे सो काचो काचा आवा गमन मिटे प्रभ सेव आप त्याग सरन गुरदेव ए रतन जन्म का होए उधार हर हर सिमर प्राण उधार अनक पाव न छूटन हारे सिमरत सात वेद बिचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंशत नानक फल पाए संग न चाल तेरे धना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सोत मीत कटाम अर बनता एनते कहो तुम कवन सनाथा राज रंग माया बेथार एनते कहो कवन छुटकार अस हाथी रथ असवारी झूठा डंप झूठ पसारी जिन दिए तिस बुझे ना बिगाना नाम बसार नानक पछताना गुर की मातू ले ए आने भगत बिना बो डूबे स्याने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल विख जाहे आप जपो अवरा नाम जपावो सुनत कहत रहत गात पावो सार पूत सत हर को नाओ सहस पाए नानक गुण गाओ त्री उतर समैल बिनस जय होमे बिख फैल होए अचंद बसे सुख नाल सास गरा सर नाम समाल छाड़ सयान बसगली मना सास संग पावे सच तना हर पूंजी सांच करो व्यवहार इहां सुख दर गए जयकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाके महतक लेख एको जाप एको सलाहे एक सिमरे को मन आहे एक सके गुण गाओ अनंत मन तन जाप एक भगवंत एको एक कर आप पूर्ण पूरे हो प्रभ्याप अनक बथार एक ते पै एक राध प्राश्त गए मन तन अंतर एक प्रभराता गुर प्रसाद नानक एक जाता सलोक फिरत फिरत प्रभ आया परिया तो सरनाए नानक की प्रभ बेनती अपने भगती लाए अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रावधान कर कृपा देव हर नाम साजना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरे सरदा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सात सात प्रभ तुम्हें तिहावो चरण कमल सेव लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एक ओधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृढ़ महासखोए हरस पावे बिरला कोए जिन चाख्या से जन त्रिवताने पूर्ण पुरख नहीं डुलहने सुबर परे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध कै संग परे सन आन सव त्याग अंतर प्रगास अंतिन लिव लाग बडभागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेव की मनसा पूरी पही सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक इनो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पया जन मरण दुख भरम गया इस पुनी सरदा सब पूरी रव रहा सतसंग हजूरी जिसका सातन लिया मलाहे नानक भगती नाम समाए सुख बिसरे जे काल न पहने सुख बिसरे जे किया जाने सुख बिसरे जिन सब किश दिया सुख बिसरे जे जीवन जिया सुख बिसरे जे अगन मै राख है गुर प्रसाद को बिरला लाख है सुख बिसरे जे बैख ते काड है जन्म जन्म का टूटा गांड है गुर पूरे तते हे बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो एहो काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरे नाम जपावो भगत पाए तरिये संसार बिन भगती तन हो सी चार सर्व कल्याण सुख निद नाम बूढ़त जात पाए बिश्राम सगल दुखा होवत नास नानक नाम जपो गुण तास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर ही सुवाओ नेत्रो भेग दर्श सुख होए मन बिकसे साध चरण धोए भगत जना कै मन तन रंग बिरला को पावे संग एक बाधी जे कर मया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्ब समाए प्रभ बखसंद दीन दयाल भगत वचल सदा कृपाल
अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल सर्व घटा करत प्रतपाल आदि पुर कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपे सो होए पनीत भगत पाए हलावे मन हीत भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुनियार नीच अजान नानक तुमरी सरन पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमक हर के गुण गाए अनक राज भोग बड़े आई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का पर संगीत रसना जपती हर हर नीत पली सो करनी सो धनवंत हिरदे बसे पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभ देव निवास सर्व सुख नानक परगास सलोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप अष्टपदी जाप कारे काच ना दृष्टिता पापन तब कहते होता जब धारी आपन सुन समाध तब बैर विरोध किस संग कमात जब इसका वर्ण चैन ना जापत तब हरक सो को किसे व्यापत जब आपने आप पार ब्रह्म तब मोह कहक होवत भरम आपन खेल आप वरती जानान करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त को किस को गनी जब के हर अगम अपार तब नरक सर को कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुपाए तब शिव सख्त कहो कित ठाए जब आपे आप अपनी ज्योत धरै तब कमन डर कमन कत डरै अपन चल तब करने हार नानक ठाकर अगम अपार बिनासी सुख अपन आसन तय जन्म मरण को कहा बिनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत गोचर प्रभ एका तब चित्र गोवत किश पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगा दे तब कौन छुटे कौन बंधन बादे अपने आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही पर जा जे निर्मल पुरख पुरख पत होता तिन तिन बहन मैल कहो गया तोता जे निर्मल पुरख पुरख पत होता ते बिन मैल कहो क्या तोता जे निरंजन निरंकार निर्वाण ते कौन को मान कौन अभिमान जे स्वरूप केवल जगदीश ते छल छिद्र लागत को कीस या जो स्वरूपी ज्योत संग समावै ते किसे पूख कवन त्रिपतावै करन करावन करने हार कनान करते का नाहि समार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई जय सर्व कला आपे प्रवीन तय वेद कतेव कहा को चीन जब आपने आप ही आप और तारे तो सगन आप सगन कहा विचार है जय आपन ऊच आपने आप नेरा ते कौन ठाकर कौन कही है चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप जय अचल छेद अपीत समाया वहां किसे व्यापत माया आपस को आपे अधीश तय गुण का नाई प्रवेश जय एक एक एक भगवंता तय कौन अचिंत किस लागे चिंता जय आपने आप पतियारा ते कौन कथे कौन सुनने हारा बो ब्यंत उचते ऊचा नानक आपस को आपे पहुंचा जय आप रचे ऊपर पंच आकार तय गुण में किन्नो बेथार पापुन ते पही कहावत को नरक को स्वर्ग बंछावत आल जल माया जंजाल होमे मोह भरम पै भार सुख दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बख्यान आपन खेल आप कर देख है खेल संकोच तो नानक एक है जय अवगत भगत है आप जय पसरे पसार संत प्रताप दुहु पाका आपे तनी उनकी शोभा उनहु बनी आपे कौत करे आनंद जो जे आपे रस भोग निर्जोग जिस भावे तस आपन लाए लावे

गुण गाओ अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख साथ साथ सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चिंद आस नित त्यागो त्रंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग यगन सागर तरो हर तन के पर लेहो पंडहार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग पज परमानंद नरक नवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का एह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत हो त उधार आप तरे लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महंत कह माथे नानक उदरे तिन कै साथे सरन जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पह सब रेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पै गुरदेव पूर्ण हुई सेव की सेव आल जंजाल बेकार ते रहते राम नाम सुन रसना कह

0: दुष्ट का संग
1: मंते विनसे सगला परम
0: कान पूछे सगल पार ब्रह्म
1: साध संग पापा मल खोवे
0: इस भगवती की मत उत्तम होवे।

सच कहे ता छो है, सच कहे ता छो हुआ वै अंतर बहुता रोहा। व्याप्या दुर्मत कुबुद्ध कुमूड़ा, मन लगा तिस मोहा, ठगे सेती ठग रल आया, सात पे एको जेहा, सतगुर सराप नदरी।

जिसनो तू संतुष्ट कलमल तिसखई जिसके स्वामी वल निरपौ सो पई जिसनो तू कृपाल सच्चा सो थई जिसनो तेरी मया न पोहै अग्नई जिस तिसनो सदा